गावन तुदनो पवन पाणी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गावन तुदनो चित गुप्त लिख जानन लिख लिख धर्म बिचारे गावन तुदनो ईसर ब्रह्मा देवी सोहन तेरे सदा सवारे गावन तुदनो इंदर इंदर आसन बैठे देवतिया दर नाले गावन तुदनो सिद्ध समाधि अंदर गावन तुदनो साध बिचारे गावन तुदनो जति सती संतोखी गावन तुदनो वीर करारे गावन तुदनो पंडित पढ़न रखी सुर जुग जुग वेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मश पयाले गावन तुदनो

जो सात गुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवासो। जिन हार जान सात गुर संगत पाई, तेन तुर मस्तक लिखिया लिखासो। तन तन सा

स्वपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम अपारा सब त्यावह सब त्यावह तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर त्यावह संत हो जी सब दुख विसारण हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट

हे प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा बपतरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कार विषण प्रकाशा सकल काल का किया तमाशा।

जशन उपजायो। आद अंत एक अवतारा सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेवकोन सुख दियो सत्रन को पालमो बाद कियो। घट

ती बरन तपे न पे न तो है तेती तुमरा लखा न जाए पसारा के है बेद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंक पयो राव कही पूपा अंडज जेरज सेतज किनी उतपुज खान बहुर राच दिनी कहूं फूल राजा हवे बैठा कहूं सिमट पयो संक्र इकठा सगरी सृष्ट दिखाए।

जिते उठवत उत्पाता सकल मलेश करो रण काता जे अस तुज तव सरनी परे तिनके दुष्ट दुख तो हवै मरे पुरख जवन।

सत्संग जी बोलो जी वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री गुरु जी के पास दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लाई त्याय फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमरो श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया करण निध्यावैदाय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशाह के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पाठ दर दत्त अंतर के गल सत बोलो जी वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चाली मुक्त हटियां जपियां तपियां जिना नाम जपया वण चकिया देख चलाई ते वाहे देख निड़ की दत्त ना प्यारे सच्यारे की कवाज दत्त अंतर के बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणिया धर्म हे सीध ते बंद बंद कटवाए खोपरियां लवाइया चरखड़िया ते चढ़े आरे न चराए गए गुरुद्वारे सेवा ते कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं आ रहा सी किसी ते कैसा स्वास्था संघ निभाया तन्ना नी कमाए जाते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। पंजा सहिता सब गुरुद्वारे दाते अंदर के बोलो जी वाहे गुरु। प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है जित आमर का सदका सर्व सुख हो जहां जहां गुरु खालसा साहब का रचा आयत देव देख की फतेह बिरद की पैज पंथकी जी श्री साहब जी साहेब खालसा जी के बोलबाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान वसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे बुंगे जुग जुगा टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखा दा मन नीवा मत उची मत पद के राखे आप वाहे गुरु। गुरु की प्रवाज पंथ सदा सहायता जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी पंथ ने छोड़िया गलत दर्शन दार सेवा संभाल दादा अपने खालसा जी ने बख्शो हे नोटिया दी ओट गुरु ने आसरिया दे आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ दार जियो दोए कर जोड़ करो अरदास तुद भावे ताने रास। एक ही प्रभाज जी आप जी के चरण कमला दरदास ने तार जी अनबख्श की है अद चरण पितर गुरबाणी सुखमी साहब का संपूर्ण पाठ दिता है उपरंत संध्या समय जान के आपके चरण सोदार रह राज साहब के पाठ किधर कृपा करो हो भुला चुका जी माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोध के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगतां दे हिरदे सारे कृपाल का करो जी अगो तो शोध के पितर बाणी टाणी बरबुदी बख्श जी करो। विवाद इस खुशी में आप दिया बख्शिया दाता आप शाह देगा तैयार करे हाथ दतार आप दी भोग लाओ शहीद प्रसाद सात संगत की रचना लायक होवे जो जी सके स्वास स्वास आप जी जा पितर नाम जप बख्शिश करो दतार जी दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश विदेश रखा बख्शिश करो जी दतार कृपा करो मेहर करो सच्चे पातशाह जीओ इस वे आप दख्शिया दातों जो नगर तुर सवार प्रवान कर दी गुरु गरीब रवाज आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टहरिया संघा संघणिया तंदुरुस्ती बख्शो चाटी करा बख्शो अभी सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना में कृपालता करने दार कृपा करो अमृत वेल तो लैके दाते आई साफ संगत दर प्रवान करो कड़िया लेके लाओ संगतों का दर्ते तिर फिर पेटा प्रवान शुभकामना पूर्ण करो जी विवाह कृपा करो सिख कौम खालसा पंथ नूं एक तत्वाग प्यार की बख्शिश करके सत संतोख की दाज बख्शो चाना न जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शो हर मैदान दीवान फतेह बख्श का निर्भरता करो जी विवाह कृपा करो दूर दराज कर बैठिया दम फतेह की श्रवण कर रही सारे संगतों की हाजिर प्रवान टुकड़िया लेखे लाओ तार आपने कृपा की संगतों उदो बख्शे संगत आपके चरणा धन्यवाद करते हैं शुक्रिया अदा करते हैं बेअंत माया ऑनलाइन गुरु घर गुरु घर सेवा संघ

संगता माया बेटा जन प्रवान करो मन का सब जमाइया सबल करो कार्यवाद मददार साफ संगता दिया शुभकामना वास्तवा पूरी करो जी तार मेहर करो सेवा प्रवान करो पुनर कमाई बख्शो वेद रखो नाम बचकर प्रण आज शाम कथा की बार हम वास्ते आज्ञा बख्शो सारे रहते का स्वार के चरण मददार शुद्ध दे पितृ सेवा की मदद करनी आप अंग संग सही प्यारे मेरे दिन बनाता नाम चता नानक नाम चढ़ी करा तेरे वाहेगुरु जी का खालसा।

साहिब तुठ पावा सास सास नानक आराधे आठ पहर गुण गावा तेरी पनह खुदाए तू बख्शंदगी शेख फरीद खैर दीजै बंदगी दंडौत बंधन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक देह कर हथ सतनाम धन वाहे गुरु

पाल्यो कटक कुटुंब तंदे ही मह मर गयो बाहर पई न बंब कबीर राम नाम जान्यो नहीं पाल्यो कटक कुटुंब तंदे।

सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जी दी हजूरी च शब्द का पाठ करदे आं, अर्थ करदे आं, विचार करदे आं। बेअंत भुलां होईयां ने साध संगत जी, आप जी ने बख्श देना। कल दा दिन दुपहरे इत्थे, अगले सोमवार तो लैके शुक्रवार तक गुरुद्वारा फरीदकोट साहिब विखे आप संगत दे दर्शन करांगे। इसे लड़ी दे आप आसीस बख्शो जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाह।

सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीर्ति आखिए करते का होए विचारो, तित कर गावो सोहेला शिविर सर्जन हारो। तुम गावो मेरे निरपव का सोहेला, हाँ वारी जित सोहेला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़े संभालियन देखेगा देवन हार, तेरे दाने कीमत ना पवे तिस दाते कमन सुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पावो तेल, देहो सजना सीसड़िया जो होवे साहिब से मेल। घर घर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिए नानक से देह अवन। राग असा महला पहला, शिव घर शिव गुर शिव उपदेश। गुर गुर एको वेस अनेक बाबा, जय घर करते कीरत होए। सो कर राख वडाई तोय रहाओ, विश विच सियां कड़ियां पहरा। थिति वारी माहो हुआ, सूरज को रुत अनेक। नानक करते कि केते वेस, राग तनासरी महला पहला। गगन में थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। धूप मलयान लो पमन चवरो करे, सगल बंदराए फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पवखंडना तेरी आरती, अनहता स्वदवा जंत पेरी रहाओ। सहस तव नैन नैन है तो हे कहो, सहस मूर्त नायक तो ही। सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिसदा चानन सब मह चानन होए। गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावे सुवारती होए। हर चरण कवल मकरंद, लोभित मनो अंधनो मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारंग, कौ होए जाते तेरे नाए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया। मिल साधु खंडू खंडा हे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया। मन हरलिव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे। कर डंडा ओत पुन

आओ साकत हर रस साध न जाने आ तनियंत्र हो मैं कंडा हे ज्यों ज्यों चलह चुवे दुख पावे जमकाल सह है सिर डंडा हे हर जन हर हर नाम समाने दुख जन्म मरण भव कंडा हे अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहुत शोभ खंड ब्रह्मंडा हे हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा है राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला इहां खाट चलो हर लाह आगे बसन सुहेला औद कटै दिन सुर नारे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसे मैं तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिसे जगाए पिया वह एहो रस अकथ कथा तन जानी।

वाहिगुरु जी की फतेह। सूही महला चौथा। हर पहलड़ी लाव पर विरती कर्म दृढ़ाया बलराम जियो। बाणी ब्रह्मा वेद धर्म दृढ़ हो पाप तजाया बलराम जियो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जिया दी पावन हजूरी दे विच अमृत वेले गुरु कियां हाजरियां भर रही गुरु प्यारी साध संगत जी आप जी सारे ही धनता दे योग हो। सतगुरु जी रहमत कारण आप जी दियां बख्शियां होईयां ए हाजरियां दर प्रवान करदे होए जपे नाम दे विच बरकत पाउंदे होए सतगुरु इसे तरह अपने पावन चरण कमलां दे नाल जोड़ के रखण। अज जो सतगुरु जी ने पावन तख्तां ते प्रकाशमान हो करके जो सानू हुक्मनामे बख्शिश कीते ने ਉਹ ਰਾਗ ਸੂਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਅੰਗ 773 ਅਤੇ 774 ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ

0: स्वामी
1: सगल कटाके अंतर जामी
0: अपनी गत मित जन हो आपे
1: आपन संग आप प्रबराते
0: तुमरी उस्तत तुम ते होए
1: नानक अवर न जान सकुए
0: सर्व धर्म मह श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया मह उत्तम क्रिया
1: साध संग दुर्मत मल हिरिया
0: सगल उद्दम मह उद्दम भला
1: हर का नाम जप हो जी सदा
0: सगल वाणी मह अमृत वाणी
1: हर को जस सुन रसन बखान।

0: अष्टपदि रमैया के गुण चेत परानी
1: गवन मूलते गवन दृष्टानि
0: जिन तो साज सवार सिगारिया
1: गर्भ अगन में जिने वारिया
0: पार व्यवस्था तुझे प्यारा दूध
1: पार जो वन भोजन सुख सूद
0: बिरद भया ऊपर साख सैन
1: मुख प्याऊ बैठ को दैन
0: एहो निर्गुण गुण कछु न बूझे जे प्रसाद धर ऊपर सुख बस है
1: जे
0: प्रसाद पी वैसी तल जला
1: सुखदाई पवन पाल कमला
0: जे प्रसाद पू

0: जय पर जय प्रसाद शक्ति अमृत काहे
1: तिस ठाकुर को रख मन माहे
0: जय प्रसाद सुगंधत तन लावे
1: तिस को सिमरत परम गत पावे
0: जय प्रसाद वसह सुख मंदर
1: तिसे त्याय सदा मन अंदर
0: जय प्रसाद ग्रह संग सुख वसना
1: आठ पहर सिमरौ तिस रसना
0: जय प्रसाद रंग रस भोग
1: नानक सदा त्याय त्यावन जोग
0: जय प्रसाद पाठ पटम ब्रहणावे
1: तिसे त्याग कत अवर लुभावे
0: जय प्रसाद सुख से सोई जय
1: मन आठ पहर ताका जस गावी जय
0: जय प्रसाद तुझ सब को मन
1: मुख ताको जस रसन बखान
0: जय प्रसाद तेरो रहता धर्म
1: मन सदा ते आए केवल पार ब्रह्म
0: प्रभु जी जब ते दरगह मान पावे
1: नानक पत सेती कर जावे
0: जय प्रसाद आरोग कंचन देही
1: लिव लावो तिस राम स्नेही
0: जय प्रसाद तेरा ओला रहत
1: मन सुख पावे हर हर जस कहत
0: जय प्रसाद तेरे सगल छिद्र ठाके
1: मन सरणी पर ठाकुर प्रभ ताके
0: जय प्रसाद तुझको न पहुचे
1: मन सास सास सिमरहो प्रभ ऊचे
0: जय प्रसाद पाई दुर्लभ देह
1: नानक ताकी भगत करे
0: जय प्रसाद आपूखन पहरी जय
1: मन तिसमे क्यों आलस की जय
0: जय प्रसाद अश्व हस्त असवारी
1: मन तिस प्रभ को कबहू ना बिसारी
0: जय प्रसाद बाग मिलख तना
1: राख परोए प्रभ अपने मना
0: जिन तेरी मन बंत बनाई
1: उठत बैठत सत तिसे ते आई
0: तिसे ते आए जो एक अलख है
1: निहा उहा नानक तेरी रख है
0: जय प्रसाद करह पुन बहुदान
1: मन आठ पहर कर तिसका ध्यान
0: जय प्रसाद तू आचार व्यवहारी
1: तिस प्रभ को सास सास चितारी
0: जय प्रसाद तेरा सुंदर रूप
1: सो प्रभ सिमरहो सदा अनूप
0: जय प्रसाद तेरी नीकी जात
1: सो प्रभ सिमर सदा दिन रात
0: जय प्रसाद तेरी पत्र है
1: गुर प्रसाद नानक जस का है
0: जय प्रसाद सुने कर्ण नाद
1: जय प्रसाद पेख है बिस्माद
0: जय प्रसाद बोल है अमृत रसना
1: जय प्रसाद सुख सहजे बसना
0: जय प्रसाद हस्त कर चल है
1: जय प्रसाद संपूर्ण फल है
0: जय प्रसाद परम गत पावे है
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे
0: ऐसा प्रभ त्याग अवर गत लागो
1: गुर प्रसाद नानक मन जागो

0: साध कै संग पाए नाम रतन,
1: साध कै संग एक ऊपर जतन,
0: साध की महिमा बरने कौन प्राणी,
1: नानक साध की शोभा प्रभाहे समाने,
0: साध कै संग अगोचर मिले,
1: साध कै संग सदा पर फले,
0: साध कै संग आवे बस पंचा, साध संग होए सब की रेन,
1: साध कै संग मनोहर वैन,
0: साध कै संग नकत हूं तावे,
1: साध संग स्थित मन पावे,
0: साध कै संग माया ते भिन्न,
1: साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न।

0: पलायन
1: साध संग अमृत गुण गायन
0: साध कै संग सर्ब थान गम
1: नानक साध कै संग सफल जनम
0: साध कै संग नहीं कश काल
1: दर्शन भेत होत निहाल
0: साध कै संग कलु खत हरै
1: साध कै संग नरक पर हरै
0: साध कै संग इहां उहां सोहेला
1: साध संग विचरत हर मेला
0: जो इच्छा सोई फल पावै
1: साध कै संग न मिर्था जावै
0: पार ब्रह्म साध रित बसै।

0: नपेख नेत्र
1: साध की टहल संत संग हेत
0: करन न सुने काहू की निंदा
1: सब ते जाने आपस को मंदा
0: गुर प्रसाद विखिया पर हर
1: मन की बाशना मन ते तर
0: इंद्री जित पंच दोख ते रहत
1: नानक कोट मधे को ऐसा अपरस
0: मैं सुनो सो जिस ऊपर सो प्रसन्न
1: विष्ण की माया ते होए भिन्न
0: कर्म करत हो वह निह कर्म
1: तिस वैष्णो का निर्मल धर्म
0: काहू बल की इच्छा नहीं
1: केवल भगत कीर्तन संग राचे
0: मन तन अंतर सिमरन गोपाल
1: सब ऊपर होवत कृपाल
0: आप दृढ़ अवरह नाम जपावे
1: नानक ओ वैष्णो परम गत पावे
0: बहुत ही भगवंत भगत का रंग
1: सगल त्याग दुष्ट का संग
0: मन ते विनसै सगला परम
1: कर पूजे सगल पार ब्रह्म
0: साध संग पापा मल खोवे
1: तिस भगवती की मत उत्तम होवे
0: भगवंत की टहल करे नित नीत
1: मन तन अर्पै बिसन परीत
0: हर के चरण हृदय बसावे
1: नानक ऐसा भगवती भगवंत कौ पावे
0: सो पंडित जो मन पर बोधे
1: राम नाम आत्म मैं सोधे
0: राम नाम सार रस पीवे
1: उस पंडित कै उपदेश जग जीवा
0: हर की कथा हृदय बसावे
1: सो पंडित फिर जोन न आवे
0: नीत प्राण सिमरत बुझे मूल
1: सुखम मैं जान असथूल
0: वर्ण को दे उपदेश
1: नानक उस पंडित को सद

0: जन कोए
1: कर कृपा अंतर उर धारै
0: पास प्रेत मुगद पाथर कौ तारै
1: सर्व रौ का औकद नाम
0: कल्याण रूप मंगल गुण गाम
1: काहू जुगत कितै न पाइयै धर्म
0: नानक तिस मिलै जिस लिखिया तुर कर्म
1: जिसकै मन पार ब्रह्म का निवास
0: तिसका नाम सत राम दास
1: आत्म राम तिस नजरै आया
0: दास दसन तन पाए तिन पाया।

0: तैसा अमृत तैसी भिख खाटी,
1: तैसा मान तैसा अभिमान,
0: तैसा रंग तैसा राजान,
1: जो बरताए साई जुगत,
0: नानक ओह पुरख कही है जीवन मुक्त,
1: पार ब्रह्म के सगले ठाओ,
0: जित जित कर रखे तैसा तिन नाओ,
1: आपे करन करावन जोग,
0: प्रभ पावै सोई फुन होग,
1: पसरे हो आप होए अनंत तरंग,
0: लखे न जाहे पार।

0: अष्टपदी कई कोट होए पुजारी
1: कई कोट आचार व्यवहारी
0: कई कोट पय तीर्थ वासी
1: कई कोट मन प्रमेय उदासी
0: कई कोट वेद के स्रोते
1: कई कोट तपीसर होते
0: कई कोट आत्म ध्यान तार
1: कई कोट कब काव विचार
0: कई कोट नव तन नाम ते आव
1: नानक करते का अंत न पाव
0: कई कोट पय अभिमानी
1: कई कोट अंध अज्ञानी
0: कई कोट किरपन कठोर
1: कई कोट भेद आत्म निकोर
0: कई कोट पर दर्ब कोहरा
1: कई कोट पर दुख न कर
0: कई कोट माया श्रम माहे
1: कई कोट प्रदेश परमाहे
0: जित जित लावो तेत तेत लगना
1: नानक करते की जाने करता रचना
0: कई कोट सिद्ध जति जोगी
1: कई कोट राजे रस भोगी
0: कई कोट पंखी सर्प उपाय
1: कई कोट पात्र बिरख निप जाए
0: कई कोट पवन पानी बैसंत्र
1: कई कोट देश भू मंडल
0: कई कोट ससियर सूर नक्षत्र
1: कई कोट देव दान इंद्र सिर छत्र
0: सकल समग्री अपने सूत तार
1: नानक जिस जिस भाव तिस तिस निस्तार
0: कई कोट राजस तामस सातक
1: कई कोट वेद प्राण सिमृत वर शास्त्र
0: कई कोट किए रतन समुंद
1: कई कोट नाना प्रकार जंत
0: कई कोट किए चर जीवे
1: कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे
0: कई कोट जख्य किन्नर पिशाच
1: कई कोट भूत प्रेत सुकर मृगा
0: सब ते नेरा सब हूते दूर
1: नानक आप अलिप्त रहे अपार पूर
0: कई कोट पाताल के वासी
1: कई कोट नरक सुर्ग निवासी
0: कई कोट जन्म जीव मर
1: कई कोट बहु जोनी फिर
0: कई कोट बैठत ही खाहे
1: कई कोट काल है थक बाहे
0: कई कोट किए तनवंत
1: कई कोट माया मह चिंत
0: जह जह पाणा तह तह राखे
1: नानक सब किच प्रभु के हाथे
0: कई कोट पय बैरागी
1: राम नाम संग तिन लिबलागी
0: कई कोट पय प्रभ कौ खो जनते
1: आदम में पार ब्रह्म लहंते
0: कई कोट दर्शन प्रभ प्यास
1: तिनको मिलो प्रभ अविनाश
0: कई कोट मांगे सात संग
1: पार ब्रह्म तिन लाग रंग
0: जिनको हुए आप सो प्रसन्न
1: नानक ते जन सदा तन तन
0: कई कोट खाणी अर खंड
1: कई कोट आकाश ब्रह्मंड।

0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानक इहा मुक्त आगे सुख पावे
0: धनवंता होए कर गरवावे
1: तृण समान काश संग न जावे
0: बहुल अस्कर मान को ऊपर करे आस
1: पल भीतर ताका होए विनाश
0: सब ते आप जाने बलवंत
1: किन में होए जाए पसमंत
0: किसे न बदे आप अहंकारी
1: धर्म राय तिस करे खुआरी
0: गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान
1: सो जन नानक दरगह परवान
0: कोट कर्म करे हो तारे
1: श्रम पावे सगले बिरथारे
0: अनक तपस्या करे अहंकार
1: नरक सुर्ग फिर अवतार
0: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: हर दरगह कहो कैसे गावे
0: आप सुखो जो पला कहावे
1: जैसे पलाई निकट न आवे
0: सब की रेन जाका मन होए
1: कहो नानक ताकि निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते कछ होए
1: अब इस को सुख नाही कोए
0: जन मैं किछ करता
1: तब लग गर्भ जून मैं फिरता
0: जब तारे को वेरी मीत
1: तब लग ने चलना ही चीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय दे सजाए
0: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे
1: गुर प्रसाद नानक हों छूटे
0: सहज कटे लको उठता वे
1: तृप्त न आवे माया पाछे पावे
0: अनक भोग विखिया के करे
1: नह तृपका था वे खप खप मरे
0: बिना संतोख नहीं को राजे
1: सुपन मनोरथ बृथे सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: बड़ भागी किसै पर।

0: संत के निंदक को सर्व रोग,
1: संत के निंदक को सदा बिजोग,
0: संत की निंदा दुख मह दुख,
1: नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख,
0: संत का दुखी सदा अपवित,
1: संत का दुखी किसे का नहीं मित,
0: संत के दुखी को डान लागे,
1: संत के दुखी को सब त्याग,
0: संत का दुखी महा अहंकारी,
1: संत का दुखी सदा बेकारी,
0: संत का दुखी जन्म मरे,
1: संत की दुख न सुख ते तरह,
0: संत के दुखी को ना ही ठाओ,
1: नानक संत भावे ता लय मिलाए,
0: संत का दुखी अत बीच ते टूटे,
1: संत का दुखी कितै काज न पहुंचे,
0: संत के दुखी को उद्यान प्रमाइये,
1: संत का दुखी उजड़ पाइये,
0: संत का दुखी अंतर ते थोथा,
1: जो सांस बिना मृतक की लोथा,
0: संत के दुखी की जड़ किश नाहे,
1: अपन बीज आपे ही काहे,
0: संत के दुखी को अवर न रखन हार,
1: नानक संत भावे ता लय ओवार,
0: संत का दुखी इउं बिल लाए,
1: इउं जल भी हुन मछली तड़फड़ाए,
0: संत का दुखी भूखा नहीं राजे,
1: इउं भाव के ईधन नहीं त्रापे,
0: संत का दुखी छुटे अकेला,
1: इउं बुआर तिल खेत माहे दोएला,
0: संत का दुखी धर्म ते रह तो,
1: संत का दुखी सद मिथ्या कह दो,
0: किरत निंदक का तुर ही पाया,
1: नानक जो तिस भावे सोई जिया,
0: संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए,
1: संत के दुखी को नरक मिल सजाए,
0: संत का दुखी सदा सहकाइय,
1: संत का दुखी न मरे न जीवे,
0: संत के दुखी की पूजे न आशा,
1: संत के दुखी चले न आशा,
0: संत के दुख न तृष्टा कोए,
1: जैसा भावे तैसा कोई होए,
0: पया किरत न मेट कोए,
1: नानक जाने सच्चा सोए,
0: सब घट तिस कियो करने हार,
1: सदा सदा तिसको नमस्कार,
0: प्रभ की उस्तत करहो दिन रात,
1: तिसे त्यावो सास विरास,
0: सब कछु वरतै।

0: सदा हर जाप।
1: अविनाशी प्रभ आपे आप,
0: आपन किया कछु न होए,
1: जे सौ प्राणी लोचे कोए,
0: इस बिन नाही तेरा किस काम,
1: गत नानक जप एक हर नाम,
0: रूपवंत होए नाही मोह,
1: प्रभ की ज्योत सगल घट सो है,
0: अनवंता होए क्या को गर्व,
1: जा सब किश तिस का दी।

0: की वाचो तूर
1: बालक की हर लोचा पूर
0: मन मूर्ख काहे बिलाई है
1: पूर्व लिखे का लिखे आप पाई है
0: दुख सुख प्रभु देव हार
1: अवर त्याग तू तिसे चितार
0: जो कछ करे सोई सुख मान
1: भूला काहे फिरे अजान
0: कौन वस्त आई तेरे संग
1: लपट रहे ओ रस लोभी पतंग
0: राम नाम जप हृदय माहे
1: नानक पथ से ती कर जाहे
0: जिस वखर को लैन तू आया
1: राम नाम संतन कर पाया।

0: अमृत सत त्यावै
1: मन बेचै सतगुर कै बास
0: ते सेवक के कार्य रास
1: सेवा करत होए निकामे
0: तिसको होत परापत स्वामी
1: अपनी कृपा जिस आप करे
0: नानक सो सेवक गुर की मत ले
1: मिस मिस वे गुर का मन माने
0: सो सेवक परमेश्वर की गत जाने
1: सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ
0: अनक बार गुर को बल जाओ
1: सर्व निधान जी का दाता
0: आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता
1: ब्रह्म जन जन मह पार ब्रह्म
0: एक आप नहीं काश परम
1: सहस सयान पलया न जाइए
0: नानक ऐसा गुर बट भागी पाइये
1: सफल दर्शन पेखत पुनीत
0: पर सत चरण गत निर्मल रीत
1: पेटत संग राम गुण रवे
0: पार ब्रह्म की दरगाह गवे
1: सुन कर वचन कर्ण आगाने
0: मन संतोख आत्म पतियाने
1: पूरा गुर अख्यो जागा मंत्र
0: अमृत दृष्ट पेखाय होए संत
1: गुण बेअंत कीमत नहीं पाए
0: नानक जिस पावे तिस लय मिलाए
1: जेवा एक उस्तत अनेक
0: सात पुरख पूर्ण बबेक
1: काहू बोल पहुँचत प्राणी
0: अगम अगोचर प्रभ निर्बानी।

0: सच उपदेश सेवक को दे,
1: मोह माया कै संग न लेप,
0: मन में रखे हर हर एक,
1: अंधकार दीपक प्रगासे,
0: नानक भरम मोह दुख तहते नासे,
1: तप्त माहे ठाढ़ वरदाई,
0: आनंद भया दुख नाठे पाई,
1: जन्म मरण के मिटे अंदेसे,
0: साधु के पूर्ण उपदेशे,
1: औजुका निर्भव बसे,
0: सगल व्याद मन ते खै नसे,
1: जिसका साथ इन गिरबाधारी,
0: साध संग जप नाम मुरारी,
1: चित बाई चुके ब्रह्म गवन,
0: सुन नानक हर हर जास श्रवण,
1: निर्गुण आप सरगुण भी ओही,
0: कला तार जिनम सगली मोही,
1: अपने चरित प्रभु आप बनाए,
0: अपने कीमत आपे पाए।

0: पूरन पुरख नहीं डोलाने
1: ऊपर प्रेम रस रंग
0: उपजय जाओ साध कै संग
1: हरे शरण आन सब त्याग
0: अंतर प्रकाश अन दिन लिवला
1: बड़ भागी जप्या ब्रह सोए
0: नानक नाम मरते सुख होए
1: की मनसा पूरी पई
0: सतगुर ते निर्मल मत लई
1: जन को प्रभ होयो दयाल
0: सेवक कीनो सदा निहाल
1: बंधन काट मुख जन पया
0: जन्म मरण दुख भ्रम गया
1: इच पुन्नी चढ़दा सा पूरी
0: रव रहया सत संग हजूरी
1: सा चलिया मिलाए
0: नानक भगती नाम

0: जब अकार एहो कछ न दृष्टिता
1: पाप पुन तब कहते होता
0: जब तारी अपन सुन समाद
1: तब बैर विरोध किस संग कमाद
0: जब इसका बरन चिहन न जापत
1: तब हरख शोक कहो किस व्यापत
0: जब अपन आप पार ब्रह्म
1: तब मोह कहा किस होवत परम
0: अपन खेल आप भ्रतीजा
1: नानक करने हार न दूजा
0: जब होवत प्रभ केवल तनी
1: तब बंद मुक्त कहो किस गनी
0: जब कहे अरागम अपार
1: तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार
0: जब निर्गुण प्रभु सहज भाए
1: तब शिव सकत कहो कि तठाए
0: जब आप अपनी ज्योत दर है
1: तब कवन निडर कवन कत डर है
0: अपन चल तो आप करने हार
1: नानक ठाकुर अगम अपार
0: अविनाशी सुखे अपने आसन
1: तह जन्म मरण कहो कहा विनाशन
0: जब पूर्ण करता प्रभु सोए
1: तब जम के त्रास कहो किस होए
0: जब अवगत अगोचर प्रभ एका
1: तब चित्र गुप्त केस पूछत लेखा
0: जब नाद निरंजन गोचर गादे
1: तब कौन छुटे कौन बंधन बादे
0: आपन आप ही अचरजा
1: मानक आपन रूप आप ही उपरजा
0: यह निर्मल पुरख पत होता
1: तह बिन मैल कहो क्या तोता
0: यह निरंजन निरंकार निर्वाण
1: तह कौन को मान कौन अभिमान
0: यह स्वरूप केवल जगदीश
1: तह शाल चित्र लगत कहो कीस
0: यह ज्योत स्वरूपी ज्योत संग समावे
1: तह किसे भूख कवन त्रिपति।

0: तो मित्र सोत पाई
1: यह सर्व कला आप है परवीन
0: तह बेदक ते बकहा कूचीन
1: जब अपन आप और तार
0: औ सगन अप सगन कहा विचार
1: यह अपन ऊच अपन आप नेरा
0: तह कौन ठाकुर कौन कही है चेरा
1: बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद
0: नानक अपने गत जन हो आप
1: यह अशल अशेद अपेद समाया
0: ऊहा किस व्यापत माया
1: उसका आप है आदेश
0: तह गुण का नाही प्रवेश
1: यह एक एक भगवंता
0: तह कौन अचिंत किस लागे चिंता
1: यह अपन आप बतियार
0: तह कौन कथा कौन सुनने हारा
1: बहु बेअंत ऊच ते ऊचा
0: नानक आपस को आप ही पहुचा
1: यह आप रचो प्रपंच आकार
0: तेह गुण मैं कीनो विस्थार
1: आप पुन तह पई कहावत
0: को नरक को स्वर्ग बंशावत
1: आल जाल माया जंजाल
0: ओ मैं मोह परम पहपार
1: दुख सुख मान अपमान
0: अनेक प्रकार कियो बख्यान
1: आपन खेल आप कर देख
0: खेल संकोच तौ नानक एक
1: जह अवगत भगत तह आप
0: जह पसर पसार संत प्रताप
1: दुह पाख का पहतनी
0: उनकी शोभा उन्हों बनी
1: आप कौदक कर आनंद चोज
0: आप ही रस भोगन निर्जोग
1: जिस भाव तिस अपन नाय लावे
0: जिस भाव तिस खेल

0: अष्टपदी आप कथ है आप सुनने हार
1: है एक आप विसार
0: जात स्वभाव है ता श्रेष्ठ उपाय
1: अपने बाणे लय समाए
0: तुम ते भिन्न नहीं किश होए
1: अपन सो सब जगत परोए
0: जाको प्रभ जी हो आप बुझाए
1: सच नाम सोई जन पाए
0: सो समदर्शी तत् का बेता
1: नानक सब श्रेष्ठ का जेता
0: जी जंत्र सब तक है हाथ
1: दीन दयाल अनाथ गुनाथ
0: जिस राखै तिस कोए न मारै
1: तुम आज मन हम बिसारै
0: इस ताज अवर कहा को जाए।

0: तुझे ध्यान दे
1: जिस भावे फिसले मिलाए
2: करे के गुण गाए
1: मन अंतर विश्वास कर मान्या जन लागा हर एक नाए
0: इसकी आस न मिटती जाए
1: सेवक कौ सेवा बन आई।

0: संत जना कह हृदय सब धर्म,
1: संत जना सुने सब बचन,
0: सर्व त्यापी राम संग रचन,
1: जिन जाता तिसकी रहत,
0: सत बचन साधु सब कहत,
1: जो होए सोई सुख माने,
0: करण करावन हार प्रभ जान,
1: अंतर वसे बार पी होई,
0: नानक दर्शन देख सब मोही,
1: आप सत किया सत सत,
0: तिस प्रभ ते सगली।

0: असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ
1: असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास
0: असंख भगत गुण

0: अगर मिशन सती पद अंत फसे जम पास पड़ेंगे
1: ये नर सरी पाट के परास है पागत नर फेर न देह तरेंगे
0: राम है जो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगा।

0: इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया
1: के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया
0: तेरा रचा रचा सो हर

साहिब गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी ने कृपा बख्शिश कीती। अमृत वेले पावन पवित्र तख्तां ते प्रकाशमान हो करके दर

संगत विच वरते रहमता करो, पावन पवित्र हुक्म बख्शिश करके दर आई समूह संगत दी, गरीब नवाजी कर दे हुए अगले दीवान सजाउंदी आग्या होवे, सिख पढ़ दे सुन दे सरबत लाहेवंद होवन, गुरु नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणी सरबत दा भला।

कोठड़ी सज्जे का विचवास। एक ना हुकम समाय ले, एक ना हुक्म करे विनाश, एक ना पाणे कड़ ले।

पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मुख द्वार जति सदावे जूत न जाने छट बहे है करबा सबको पूरा अपे होवे घट न कोई।

सत्संग जी बोलो जी। वाहे गुरु वाहे गुरु। एक ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार्षिक पाचे दसवीं प्रथम भगवती समर कहे गुरु नानक लई त्याय फिर अंकित कुरते अमरदास रामदास से हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद सिमर श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याय सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कारण उन्हें दयावैताय सब थाई हुए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई हुए सहाय दसा पातशी के पितरात्मक स्वरूप साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी पारदार तैन तर के घर से बोलो जी। वाहे गुरु। गरीब नवाज आप जी दे पांच प्यारे चार साहबजादे चार ही मुक्ते हटियां जपियां तपियां जिन्हें नाम जपया वन छकिया दे चलाई ते वाही दे कंडिट कीता दिना प्यार सचारे की कवाई दे अंदर की बोलो जी। वाहे गुरु। जिन्ना सिंघा सिंघणियां धर्म हे सही दिते बंद बंद कटवाए खोपरियां लवाइया चरखड़ियां जड़े आ रहे नचराए गए गुरुद्वारे सेवा से कुर्बानियां कीतिया धर्म नहीं आ रहा से किसी के कैसा शासन संग निभाया तिना नहीं कमाई दा अंदर की बोलो जी। वाहे गुरु। पंजा तख्त गुरुद्वारे का ध्यान अंदर की बोलो जी। वाहे गुरु। प्रथम है सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे नाम चेता है चित आमर का सद का सन सुख हो गए जहां जहां गुरु खालसा साहब तचार्य देखते की फतेह वृद्ध की पहज पंथ की जी श्री साहब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। वाहे गुरु। सिखा सिखी दान केस दान रह दान विवेक दान विशाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहब दर्शन स्नान चौकियां चंडे पुंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। वाहे गुरु। सिखा का मन नीवा मत उची मत फट के राखे आप वाहे गुरु गुरु गरीब नवाज पंथ सदा शाही दता जियो गुरुद्वारा ननकाणा साहब पंजा साहब होर गुरुद्वारे गुरुधाम जिन्हों तो आप जी पंथ न छोड़िया गया है उन्हें खुले दर्शन की राहत सेवा संभाल दादा अपने खालसा जी बख्शो हे नोटिया जी ओट गुरु ने आसरिया के आसरे गुरु धन धन गुरु ग्रंथ उतार जियो दोए कर जो करो अरदास तू तो भावे ताने रास हे गरीब नवाज जी आप जी के चरण कमला दरदास नहीं दतार जी आपने बख्शिश की है अमृत वेले प्रकाश बनो संगत दर्शन दस दे के निहाल दता जियो बेहद बाणिया ने पाठ दता एस वे राजीव सिंह ने आपके चरण आशा की वादे संपूर्ण कीर्तन किए ने छह पौड़ियां नाथ साहब ने कीर्तन सारी कृपा करो हुई भुला चुका की माफी बख्शो पढ़ी हुई बाणी सोच के सचखंड प्रवान करो बाणी का भाव सारिया संगत दिशा कृपालता करो जी। गुरु जी महाराज इस खुशी में आप दिन बख्शिया दाता कड़ाप शाह देगा तैयार करके हाथ दतार आप जी भोग लाओ शीत प्रसाद सा संगत की रचना लायक होवे जो जी सके श्वास श्वास आप जी का पित्र नाम जपे बख्शिश करो दता दुखा कलेशा रोगों का नाश करो सुखा का प्रकाश करो देश प्रदेश रखा बख्शिश करो जी की मैं बख्शिश करो गुरु सब सचे पातशाह जी आपके चानक दरदास तार पिता जी कानून के छोटे घलो कारे में तार पिता जी जिते गरीब नवाज जी मुगल फौजा लखा की गिनती गरीब घेरा पा गरीब नवाज जी हो उसे गरीब नवाज आप भी चाहे सेवा कर रहे आप भी बख्शिया दातों की पालना कर रहे तार पिता जी हो सिंघा सिंघणिया गरीब दस बारह हजार सिंघा सिंघणिया बच्चों गरीब नवाज उन्होंने दाल में शहीद किया दरदार जी सो आप के नाम से गरीब नवाज उस समय के सिंघा सिंघणिया बच्चिया ने अपन कुर्बानियां आपके चरणों वास्ते दित्तियां दार कृपा करो बख्शिश करो मेहर कर दे दार जी उन्होंने सारे की आत्माओं ने अपने चरण की दाल बख्शिश करो अज सिख कौम खालसा पंथ दार पिता जी उन्होंने दरसाए मार्ग में अपना वास्ते उन्होंने भाइयों रीतों चलन वास्ते दार पिता जी सब नी बख्शिया दातों की गरीब नवाज पालना कर ली भावना की दाल बख्शो भावना की दाल बख्शो गरीब नवाज बख्शो सत्य पातशाह जी हो मेहर करो अमृत वेले तो लैके दरते आई साफ संगत जाल जी दर प्रवान करो घड़िया लिख लाओ संगत दर तेरे पर पेट मन शुभकामना पूर्ण करो जी। गुरु जी महाराज आप दखियां दाता जी लंगर तुर सेवा प्रवान करनी आपके चरणा सेवा कर रहे सारे टैजी सिंह सिंघणियां तंदुरुस्ती बख्शो चाटिकला बख्शो और सदा ही इस तरह अपने चरणा सेवा की भावना बखने की बात करो। गुरु जी महाराज सेव कौम खास संबंध एकता सुभाग प्यार जी बख्शिश करके सत नु दाल बख्शो चाना ना जोड़ो गुरबाणी का प्यार बख्शिश करो। गुरु महाराज सदा आप जी बख्शियां दाता का पालना करने वास्ते बार बताल बख्शो।

पाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई।

झूलन तेरा खो हो प्रभु, नानक दे कर हाथ डोलन तेरा खो हो प्रभु, नानक दे कर हाथ सतनाम

वाहिगुरु जी की फतेह। श्लोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन है, दयाल पुरख भगवान है, नानक।